नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के

0: यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार सुनुले आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी बारिपदा नवेदन करुचु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना आज प्रथम शिल्पी पंकज चाल कंठरे श्रीहर्ष करंक रचना

0: द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अद्यारभ्य गुजरात राज्ये द्विदिवसीयस्य चिंतन शिविरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य राज्यानां कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठ प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य वितरणस्य च विषये प्रमुख विषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां सप्तदशतमे निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां 97.8% यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
2: आकाशवाणी कटक सुनंतु हमर आजिरो कार्यक्रमर सूचना।
3: संस्कृतर संवाद सुनले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी बारिपदा। समय सकाळ 7:00 सुनंतु कार्यक्रमर सूचना। आज सकाळ 7:25 रे प्रचार करिबो सूचना एवं मूर्छनार कार्यक्रम परिक्रमा। गीतांजलि शुणवे दुईटी भागरे, प्रथम भाग सकाळ 8:15 एवं 8:45। आकाशवाणी कटक केन्द्ररु प्रचारित पीठ परिक्रमा आज सकाळ 8:30।

0: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାନସେନ ସିଂ ଗାଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା। ସମୟ ସକାଳ 8ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
2: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
3: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी

0: स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: जालिम लोशन दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
2: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
3: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
2: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
4: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का

0: पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
2: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है कबूला। एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही देशों की भागीदारी। खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी बिंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़ हजारों बना।
1: एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गीत पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी बातचीत

0: फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार प्रभात शुणुले आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारीपदा समय सकाळ 8:15 अल्प क्षण मध्यरे आरंभ करछु गीतांजलि।
2: चासी भाई और भोनी मानंक पई जरूरी सूचना। राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्र गुड़ी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण में महजूद रही। राज्य में सारर कौन अभाव नहीं तेणु अजथा भयभीत न हो किंबा आगुआ अधिक सार महजूद न करी केवल फसल वर्तमान आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु। एथिपाई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मशीन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाव रसीद संग्रह करंतु। गुजबरे विश्वास करंतु नाही। सार कलाबजारी को रोकंतु। मां माटीर सुरक्षा पाई जैविक सार प्रयोग करिबा पाई भूलंतु नाही। कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
3: हाँ भाई क्या चलो हो
4: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
3: ओहो माने कथा फिटे कह
4: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समर्सिबल मोनोब्लॉक और होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजेल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
3: केठे मिलुची हो एते सुविधा
4: जानि न बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
5: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
3: ताला जीबा ना की कहजो
4: चलो।
1: गीतांजलि परिसर को आपण मानको स्वागत। श्रोता बंधु निज कार्य को आत्मसमीक्षा करबा होची सबुट गुरुत्वपूर्ण। एहा एक बड़ अस्त्र रूपे निज स्वप्न साकार करबारे सहायता करिथाय। मनीष जीवन रे ठीक भूल तो लागि रही थाए। निज भूल आमे जेबे निजे चिन्ह पारिबा तेबे जाई ताकु सुधारिबा को चेष्टा करिबा ताहाई आम स्वप्न को वास्तव रूप देखिबार बाट परिष्कार करिबो।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में रेडी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं तुलसी कुमार और केके ने, अल्फाज नीलेश मिश्रा के।

0: वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्तिक और बॉम्बे जयश्री की आवाजों में फोर्स फिल्म का गीत, जावेद अख्तर की रचना, हैरिस जयराज का संगीत।
3: चाहूं भी तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है,

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती से। आइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि हर साल अक्टूबर को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जो हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और सही दिशा देते हैं। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को भी आकार देते हैं। एक अच्छे शिक्षक की सीख जीवन भर हमारे साथ रहती है, इसलिए आज का दिन उन सभी गुरुओं को धन्यवाद कहने का दिन है जिन्होंने हमें बेहतर इंसान बनाने की राह दिखाई। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं दम मारो दम। इस फिल्म का गीत जयदीप साहनी ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत, आवाजें अश किंग और सुनिधि चौहान की।

और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। कुमार ने इसकी रचना की है और सुरों में ढाला है प्रीतम ने।

चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुना आरक्षण फिल्म से। आवाजें थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की, प्रसून जोशी की रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत। इसी के साथ अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देखे देखो।

उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई।

उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दनबाई से हुई जो खुद एक संगीतकार थी। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखी और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत

जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया।

0: जब चले तो।
1: सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया और इस तिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया।

फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया, जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया, लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा।

दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौड़, शब्बीर कुमार और सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने अपने संगीत में गाने का मौका दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के जे येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया।

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर। संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और

0: उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
1: India and Russia have historically very good relations.
2: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इटली के अखबार कोरियेरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की कोशिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। अखबार के अनुसार ओमानी सह पायलट हम्माम अल हम्मामी ने विमान पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।
4: पहुंच गए आप, मंदिर पहुंच गए आप, अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
3: क्या बात है।
4: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
3: वाह,
4: उसकी साधना
3: है। बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
4: परमेश्वर। तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही के 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1960

0: 64 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए,
1: जी जी
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू गवाल जो थे उन्होंने
1: जी,
0: दी
1: जी।
0: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
0: तमाम
1: प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिकर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक
0: इतना,
1: जीवन काल में
0: इतना,
1: इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह,
0: और वो 17,000 रुपए का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए कर्जा था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी,
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक एक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक एक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी,
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल। ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है
1: जी।
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ
1: जी,
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक एक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
1: नोटेशन
0: लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
0: और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी,
1: में
0: जी,
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी,
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है
1: जी।
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया। मदन जी, आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने

0: बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड। ओके,
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन?
1: अरेंजर,
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी।
0: हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब, और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: बाबा,
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वह लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
1: जी,
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ।
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, यहां ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, डेढ़ मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी सोनी जी की,
0: क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा। तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया है बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा। सुना ये कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां। ओके टेक करो,
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है? नौशाद साहब ने, ये किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी जी,
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए। सिंगर्स का तो नाम आता है, बट म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा,
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके,
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ। जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाय मी। म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी,
1: हॉर्न की आवाज आती है।

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी।
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे ही अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए साहब के साथ और सबके साथ, वसंत देसाई के साथ
1: जी।
0: फिर पाटी जी थे जिन्होंने काम किया कल्याणजनन जी के साथ, वासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी। जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: से भी उन्होंने काम किया, क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी। जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया है।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था।
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: कसब कसब कसब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहा, जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे, तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: वो 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, आप भी बोल रहे हैं ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया। मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है
1: जी,
0: सबसे
1: जी।
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और कॉपी नहीं, इसके लिए परेशान
0: रहे। किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे।

0: और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
0: ईमानदारी,
1: बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है,
0: जी
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरिंदम के ही बुलाया था उन्होंने,
1: अच्छा
0: हाँ लेकिन हो नहीं सका।
1: जी, सी रामचंद्र के साथ
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी,
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपिट ली थी, डैडी
1: मोपेट जी,
0: मोपिट डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपिट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपिट में जा रहा था
1: अच्छा
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
1: हाँ,
0: हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड,
0: जोर से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब,
0: तो मुझे मैं कहा अन्ना आप कहाँ, मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे। मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे, ये जो आशीर्वाद है,
1: जी
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप,
1: जी, उसके
0: आशीर्वाद
1: काबिल
0: आपको
1: होना पड़ता
0: लेना
1: है
0: पड़ता है,
1: जी।
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और
0: लेकिन उनके
1: लगातार साथ रहा
0: लगातार साथ, जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ था।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: बजाते सेट करता था, फिर लोग बजाते जी आके रिहर्सल करते थे 9 बजे, 9 सवा 9 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा काम, चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
1: मनोहरी दादा
0: मुरली दादा की फ्लूट हो गए,
1: सेक्सोफोन।
0: सेक्सोफोन हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया।
1: मारुति बजाते थे।
0: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन, पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे,
1: जी
0: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: और 9 रत्न कौन थे?
1: जी।
0: मनोहरी जी,
1: एक,
0: बासु जी
1: दो,
0: के, भूपी जी,
1: तीन,
0: उसके बाद भानु,
1: हाँ,
0: चार,
1: चार,
0: मारुति,
1: पांच,
0: देवीचंद,
1: छः,
0: अमरुत,
1: सात,
0: होमी मुल्ला
1: आठ,
0: और एक चंद्रकांत।
1: नौ। गजब
0: ये
1: गजब
0: 9 लोग
1: जी।
0: उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे
1: ये सब हीरे थे, नगीने
0: ये।
1: थे, ये
0: और
1: सब
0: इसमें
1: फिल्म
0: कई लोग
1: म्यूजिक के।
0: तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
1: हाँ
0: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
1: गजब गजब।
0: हाँ, चंद्रकांत
1: ये
0: हो
1: एक
0: गया,
1: पूरी टोली का।
0: पूरी टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके ड्रेसिंग रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
1: जी
0: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं
1: वाह वाह वाह,
0: खाना खाते हैं,
1: ऐसी
0: दारू
1: सुपर क्रिएटिव।
0: ऐसा।
1: शान फिल्म के गाने में यमा यमा में
0: हाँ
1: आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके
0: जी
1: बारे में
0: जी
1: बताइए।
0: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा यार इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो बजा, आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर,
1: क्या बात है
0: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं,
1: जी,
0: तो सुन लीजिए आप।
1: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था। मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
0: जी
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया
1: एक
0: था।
1: जुमला बन गया। तो अभी एक रिकॉर्ड

चल रही थी तो एक पीछे से की वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हूं।

0: सर साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी का गलती हुई थी केवीएन, भूपे जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
1: क्या बात है,
0: ही इज लाइक अ फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम।
1: वाह,
0: फिर मैंने कहा केवीएन केवीएन। सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
1: जी जी जी।
0: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
1: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
0: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
1: हाँ।
0: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
1: जलपरी वाला
0: वायलिन सोलो का पीस था।
1: अच्छा,
0: सागर फिल्म।
1: जी।
0: तो जो वो कमलासन बजाता है।
1: अच्छा अच्छा, वो जी।
0: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
1: हाँ।
0: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
1: जी जी जी।
0: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
1: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते।
1: जी।
0: इतना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
1: हाँ।
0: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे।
1: जी जी।
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, ये उत्तम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
1: स्नैप आ जाए,
0: तू हाथ से करना।
1: जी।
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
1: जी,
0: अभी
1: हाँ
0: ये साउंड है
1: जी,
0: ये चाहिए, तार टूट गई।
1: हाँ हाँ।
0: तो ये 2-3 रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूजिक बना तब मुझे समझ में आया वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: नहीं याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, कर्ता अनुश्री पाठक।

0: भारती के थे बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, आते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ
4: हवा लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी इंटरनेट स्ट्रीमिंग न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो ग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती ऑफिशियल पेज को।

चंद्रदास की आवाज थी, निदा फासली के बोल थे। रंग तरंग कार्यक्रम की ये थी पहली पेशकश। जगजीत कौर की आवाज, बोल मिर्जा शौक के, मौसिकार खयाम।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

चिंता करी कहउचंती ये केउ देवता पूजुचंती जहार महाप्रसाद बहुत सुमधुर नीति प्रातरे जाउचंती आ रात्रे रोह को फेरु अचंती। यहाँ कोई सारी बापरे प्रीति बोसराजी ललिता कले कण प्रीति।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुनिए सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और इस इबारत के जरिए आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आज किस तरह के या कौन कौन से गाने पोस्ट होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। ये इबारत उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने विविध भारती का फेसबुक पेज नहीं देखा है। दो लोगों की बातचीत है इस इबारत में। देखो ना, अक्टूबर आ गया, पल पल कैसे बीता जा रहा है ये साल। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। पता भी नहीं चलेगा साल बीत जाएगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फंसाना है। तुम तो शायर बन गई। मैं शायर तो नहीं, शायर नहीं या तुम शायर बदनाम। अच्छा बताओ, क्या ख्वाब देख रखा है तुमने अपने लिए? मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने।

अच्छा तो क्या आज भी गानों में बातें करनी है? धूप लगे तुझको तो छाया बनूं, किताबों में लिखे हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? जाओ नहीं करनी बात, बात बात में रूठो ना। तो भाई ये आज की इबारत, और इस इबारत के जरिए आज के गानों का इशारा तो हो गया। बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस हमें मिले हैं, और इतने सारे कि इन सबको पढ़ना लगभग मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अक्टूबर की दस्तक के साथ साल बीतने के एहसास ने दो दोस्तों की बातचीत को बहुत रोमांटिक और संगीतमय बना दिया है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं आपसे रूठा हुआ हूं क्योंकि आप जल्दी जल्दी कार्यक्रम देने के लिए नहीं आते हैं, बहुत इंतजार करवाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अक्टूबर का यह खूबसूरत महीना साल के सबसे प्यारे सुहाने मौसम की शुरुआत लेकर आता है। इस महीने गर्मी कम होती है, हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सच में कितनी खामोशी से पल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता कब महीना साल बन गया। इसलिए जो पल आज हमारे पास हैं उसे शिकायतों से नहीं, मुस्कुराहटों और अपनों के साथ जी लेना चाहिए, बीता हुआ पल लौटकर वापस नहीं आता। एक और श्रोता का कमेंट है, जनवरी से शुरू किया आ गया अक्टूबर, लाख कोशिश की मगर मिला न कोई दिलबर, मिला न कोई दिलबर तो अकेला रह गया, दुनिया भर के रंजो गम सह गया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा एक श्रोता और हैं जिनका कमेंट शामिल करते हैं और फिर आज के पहले गाने की तरफ बढ़ेंगे। ये लिखते हैं कि विविध भारती के 70वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक और सुरीले प्रसारण में यूनुस खान, ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी शामिल हुए, इन्हें समर्पित एक कविता, विविध भारती के 70 साल सुरों का कारवां, 70 बरस से जो गूंज रही है वो देश की प्यारी वाणी है, हर दिल को जो सहलाती है वो सुरीली कहानी है, सतरंगी सुरों की महफिल में कुछ नाम सदा ही छाए हैं, अपनी आवाज के जादू से जो दिलों में बसने आए हैं, यूनुस खान साहब की वो गंभीर नशीली तान सुनो, अल्फाज तराशे लगते हैं जब गूंजे उनके गान सुनो, फिर आती है ममता जी जो सबकी रेडियो सखी बनी, सुख दुख की बातें करने वाली वो एक पावन नदी बनी, सखी सहेली के आंगन में वो बहनों की हिम्मत जगाती हैं, ममता मई उस आवाज से वो हर घर को महकाती हैं, और मंदाकिनी जोशी का अंदाज बड़ा ही पावन है, हेलो सहेली और सदाबहार नगमे जैसे महकता सावन है, सहज सरल सौम्य रूप बातों में मिसरी घुलती है जब वो माइक पर आती हैं, यादों की खिड़की खुलती है। सुंदर बातें आपने लिखी है। चलिए आज के पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और वो गाना है ये, गुलमाल फिल्म का गाना, गुलजार साहब के बोल। जब ये गाना बजता है तो जैसे गाने अतीत की तरफ हमें ले जाते हैं, ये गाना अतीत के किस बरस की तरफ, किन यादों की तरफ आपको ले जाता है। इसके अलावा एक और बात, 9 महीने तकरीबन बीत गए इस साल के, इन 9 महीनों में आपने क्या खोया और क्या पाया।

आने वाला पल जाने वाला है। हमारे कई श्रोताओं को इस गाने के जरिए मजा आ गया। एक श्रोता ये कहते हैं कि फिल्म गोलमाल का गीत सुनकर उत्पल दत्त याद आ जाते हैं, और याद आता है आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें आगरा का पेठा खिलाऊंगा। उत्पल दत्त का रोल शानदार है। और कुछ श्रोताओं के लिए एक क्विज, एक सवाल, गोलमाल फिल्म के संवाद किस लेखक ने लिखे थे ये बताइएगा। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि रीगल सिनेमा जमशेदपुर में ये फिल्म देखी थी और बस वो दौर याद आ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विगत 9 महीनों में कुछ अजीज दोस्तों को खोया है जिनसे हमारा रीयूनियन गुलजार रहता था। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस वर्ष हमने खोवे की बर्फी पाई। भाई ये मजाक का जो तरीका है ये मजेदार है। इसके अलावा एक और श्रोता जो कहते हैं कि अपने कॉलेज और दोस्तों की याद की तरफ घूम गए इस गाने को सुनकर। अक्टूबर अपनी गरिमा और पूरी लालिमा के साथ उपस्थित है, और जब ये गीत आने वाला पल रेडियो पर बजता है तो लगता है कुछ भी नया पाने की चाहत में वो सब कुछ गवा देना जो पहले से तुम्हारा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आपने शोले की जो थीम कार्यक्रम को शुरू करते हुए बजाई उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है, देखिए ना बातों बातों में अक्टूबर भी आ गया। कभी धूप तो कभी छांव की तरह जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इस बदलते वक्त में अपनों के साथ रूठने मनाने का ये सुरीला सिलसिला और सात रंग से सजे खूबसूरत सपने ही जीने का असली मजा देते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि रूठना सेहत के लिए नुकसानदायक है और आपस में नोकझोंक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस दृष्टिकोण से ये इबारत लिखी हुई लग रही है। चलिए भाई, जब रूठने का जिक्र आ गया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज आप किससे रूठे हुए हैं, आज आप किससे रूठे हुए हैं और क्यों रूठे हुए हैं।

अवतार का ये राजेश खन्ना और शबाना आजमी बहुत ही प्यारी थी, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता जिन्होंने लिखा कि आनंद बख्शी का लिखा ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गोलमाल सबसे पहले दूरदर्शन पर देखी थी, पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में देखता था। घर के बुजुर्गों को ये फिल्म खासतौर पर पसंद आई थी। एक श्रोता ने जवाब दिया है कि शानदार और चुटीले डायलॉग गोलमाल फिल्म के डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में अकेले आदमी को बस एक सच्चा सहारा मिल जाए तो उसकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी शादी की शुरुआती दिन थे जब मैं अक्सर अपनी पत्नी को ये गीत सुनाता था। वैसे मैं एक गायक हूं और जब पत्नी रूठती हैं तो गाने सुनाकर उनको मना लेता हूं। और फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम आज उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा है। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो ये लिखते हैं कि फिल्म अवतार के जरिए मुझे एके हंगल याद आ गए और शोले की आपने जो ट्यून बजाई उससे भी एक हंगल याद आ गए। एक श्रोता अपनी नवासी से रूठे हैं क्योंकि वो वीडियो कॉल पर उनसे बात नहीं कर रही है। तो ये हमारे श्रोताओं की बातें और कुछ और कमेंट्स जो हमारे श्रोताओं के आए हुए हैं उसमें से एक श्रोता ये कहते हैं कि वो अपने शहर मिर्जापुर आए हुए हैं और यहां अपने विविध भारती के संघ हैं और कार्यक्रम सुन

0: और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि आपने याद दिलाया तो याद आया कि अब इस साल के 3 ही महीने बचे हैं और तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, ये गाना इबारत इशारा करती है। और निदा फाजली की बोल, आरडी बर्मन का संगीत, अक्टूबर का समा कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे गर्मियों से निजात दिलाता हुआ सर्दियों की हल्की दस्तक सुनाता हुआ गुजरे साल के ख्याल लिए हुए अपनी ही धुन में मगन रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ख्वाब, जब मैं स्कूल में था तो खुद कविताएं लिखा करता था, फिर जिम्मेदारियों में लिखना कब कहां खो गया मालूम नहीं, और सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत पढ़कर कविताएं लिखने का जुनून जागा है, और ख्वाब तो यह है कि विविध भारती मुझे बुलाए और मेरा इंटरव्यू करे। ओ हो हो, बड़ी प्यारी बात। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है, कतरा कतरा बरसना और लफ्ज हो जाना, आसान नहीं है कुछ कहना और शायर हो जाना।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल है।
0: फिल्मी दुनिया के सबसे छबीले नायक का गाना।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा।
0: कौन है वो?

0: tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada and Vidarbha and some more parts of Maharashtra and Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The weather agency said thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Telangana, Sub-Himalayan, West Bengal and Lakshadweep till tomorrow. Similar weather conditions are also expected over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura for the day. Meanwhile, strong surface winds are expected over Andhra Pradesh during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon session today. The Sensex rose 218 points to 72,128, while the Nifty added 71 points to 22,493 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained almost 0.5% and the small-cap 100 index advanced 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे

0: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामलान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामलान के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामलान को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी, कहीं भी, एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।

0: वैल्यू।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
3: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
2: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
4: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गाँव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
2: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था।

0: यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कटक अमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे एही विज्ञापन परे परे।
3: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
4: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर्स, पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शकील बदरनी के बोल रवि।

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुमन कल्याणपुर की आवाज, नूर महल फिल्म का ये गीत सबाब खानी के बोल, जानी बाबू कबाल की तर्स।

0: ಹೇಳಿ.
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियां सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार.
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार.
2: बिल्कुल वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है. आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा लगता है.
1: सब अच्छा लगता है और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रखिए.
2: बिल्कुल. और आज हम विषय बता देते हैं, ध्यान रखा जाता है अच्छे खाने से.
1: बिल्कुल.
2: आज हम बताने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला और बफौरी. हमारे साथियों ने भी व्यंजन की इस व्यंजन की रेसिपी भेजकर रखी है तो हम पढ़ेंगे.
1: बिल्कुल.
2: और
1: जब साफ सुथरा घर होता है ना तो घर में बैठना रहना कितना अच्छा लगता है.
2: बहुत अच्छा लगता है.
1: अपने पसंद के गाने सुनो, जो चाहे वो करो, अपनी पसंद की किताब पढ़ो या फिर कुछ अगर ऐसे ही कुछ नाचना है मिलकर सब परिवार के साथ वो भी कर सकते हैं.
2: और कहीं भी देखो, आप कहीं भी होकर के आओ, घूम फिर के आओ, आपको चाहे कितनी भी सुविधाएं मिली हूँ लेकिन जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो हमें स्वर्ग से कम नहीं लगता. हाँ, है ना?
1: और एक कैसे सुकून वाली हम सांस लेते ना. हाँ, घर. हाँ.
2: और आज कथा सुधा में हम अमावस की रात का भाग दो सुनवाने वाले हैं.
1: बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने संदेशों में भेजा है कि वो इंतजार कर रहे हैं.
2: बिल्कुल. और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग सुनेंगे एक गीत.
1: बिल्कुल भाई, संवाद तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ में गीतों का होना बहुत आवश्यक है.

0: मंजरी, दिल भले आज ना दे या कल ना दे, लेकिन कहानी सुनने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं कहानी
0: अमावस की रात।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। अब तक आपने सुना,
4: दीपावली की संध्या थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।

0: अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: वही अमावस्या की रात्रि थी, वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे, हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरिजा का दवा दर्पण कर सकें। क्या करें, इस निष्ठुर वैद्य को यहां कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तहार छापता, तेरी दवाइयां कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को, जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा की भांति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक एक कर दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वो कागजी पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद के अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूंड से उस अरण्य के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर द्वारपालों की भांति खड़े थे। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले,
2: आपका आगमन कहां से हुआ है?
1: नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया,
3: मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है, मैं वहां का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हुआ।
1: पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले,
2: ये आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं।
1: इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी, वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को अपने पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया है। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा,
3: आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी?
1: देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले,
2: संभवतः हो, कुछ कह नहीं सकते।
1: ठाकुर ने

0: बहुत लापरवाही से कहा।
1: ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे।
0: पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था।
2: शंका होने लगी, भाग्य हरे भाग ना दिखा रहा हूं। उन जाने वो पचलकर राख हो गया या नहीं, यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वो पत मिल जाए, वो पत मिल जाए। हमने अनेक कष्ट सहे हैं, अब हम पर दया करो, अब हम पर दया करो।
0: इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्थरों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में दो तीन बार कूदे, तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले,
2: प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो अब तो बच जाएगी गिरजा, अब तो बच जाएगी।
0: उन्मत्तता में उन्हें ये एकदम नहीं जान पड़ा कि गिरजा केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए, परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
2: लीजिए, वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए।
0: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि यह संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
1: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
0: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1 हजार के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

0: वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतःपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेट कर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में यह विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को

0: सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है, जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा, आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा, कैसी तभी।
0: किंतु जब गिरिजा तनिक भी ना मिनकी, तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
1: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है, ये सौदा महंगा बड़ा महंगा।

0: अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं। पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त नंगे सिर नंगे बदन लाल आंखें डरावनी सूरत कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हांक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी के पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी ये 75,000 के नोट है, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर निछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे

0: சித்துவன் இன்னொரு பிரோசு கைகுணா பியாரியர் இன்னொரு பிரோசு கைகுணா பியாரியர்
1: वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
1: ये बातें जी के अंतःकरण से निकली थी।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर, ठाकुर नवयुवक, दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सहेली और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत जरूरी शिक्षक
0: ज्यादा जरूरी
1: है ना। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है प्रभावशाली बनाता है तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना जिसे कहते हैं ना संवाद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाई को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूँ मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा जो टीचर होते हैं हमारे शिक्षक होते हैं तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हो और हर बच्चे वही समझे। आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है इसको किस भाषा में सरल भाषा में समझ में आता है कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही इस बात का आ गया है एक संदेश के द्वारा कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
1: बिल्कुल और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद् गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई है जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात लिखी है।
0: बहुत अच्छे से बताया और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल

0: और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत जरूरी, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है, न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती है हम नहीं बोल पाते
1: बिल्कुल,
0: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नजदीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है, संकोची होते हैं, याद नहीं हुआ, तो वो पीछे बैठ जाते हैं जाकर के, और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं ज्ञानी होते हैं कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि तुम
0: उठो, नजर
1: पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं, कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। यह संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
0: बिल्कुल, जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की, जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी निडर वाली हो जाए ना, तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है। और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयां साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
1: कभी
0: बताएंगे ही नहीं, चुप ही रहेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बताए क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या किस तरह उन्हें बोले या बताएं कि समझाएं।
1: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए,
0: कभी कभी डरते भी सबके सामने बोलने।
1: तो जो हम जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते हैं, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है। आपसी विश्वास बढ़ता है, समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है, मानसिक तनाव में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं, उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं,
1: आगे काम आएंगे,
0: है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो नहीं हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
1: और देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन में बढ़ने की राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं ना। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं
0: है, और संगीत से बड़ा भी कोई शिक्षक नहीं
1: जी।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है,
1: बिल्कुल,
0: चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले।
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है, है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं हिलेंगे।
1: तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे, हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा ना होने दें, जो चीज लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
0: बिल्कुल सही कहा, और घर में हर सामान की एक निश्चित होनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद चीज को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है, और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताजी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
1: बिल्कुल, और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंक, गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें। बाथरूम की सफाई को टाले नहीं, गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें। खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है, और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
0: बिल्कुल, और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते
1: बिल्कुल,
0: हैं ना?
1: बिल्कुल,
0: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर घर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होते हैं, सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो

0: बोर्ड, सबकी उंगलियों की
1: उंगलियों के निशान पड़ता है। बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया,
0: करना बहुत जरूरी है।
1: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों, कपूर या हल्की प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
0: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही ये भी साफ कर दो ये भी साफ कर दो, नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होते हैं उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे, अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह से घर के जो हमारे श्रोता भाई हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर के महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो आप आकर हमें डांट सकते हैं
1: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। और हमारे साथी और लिखते हैं कि सुकून भरे स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थान हो, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ये लिखते हैं, और स्वच्छता जहाँ होती वहाँ पे बरकत होती। बहुत सही बात है, हमें घर के साथ साथ जो चीजें आपने लिखी जहाँ जहाँ के बारे में, उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य के मुझे साफ रखें।
0: बिल्कुल। अच्छा एक और संदेश ये कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहाँ शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है, जहाँ धूल नहीं होती वहाँ बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है, और जहाँ हर चीज अपनी जगह पर है वहाँ विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आंखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ सारी बात एक उसमें डाल दी में।
1: बिल्कुल। हम एक साथी लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्रि में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है। अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है।
0: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है, फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: भाई देखो घर भी सुंदर हो आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं तो वो घर और भी सुंदर लगेगा, है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है तो वहां कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं बल्कि जीवन की उलझनों को बुहार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहां पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहां हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और बुहार कर जो शब्द आया है ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना।
0: अच्छा एक शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, उन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेजों की जांच करें, रैपर है रसी हैं या कप वहां पड़े रहते हैं ना क्योंकि ऑफिस में भी सुबह की चाय हो ही जाती है, वो सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें, दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने की से जगह जो है वो ताजा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब अगर आप ऑफिस पे हैं या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पे आपका सिटिंग जॉब है तो ये बीच बीच में 2-2 मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें, कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ ये ऐसे रखो इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं।
1: कई बार तो क्या होता है कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है आपने कोने में सामान रखा है लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर कर देता है।
0: ऐसा लगता है हर घर में डाइनिंग टेबल
1: कोना भरे रहते जमाने के लिए क्योंकि लगता है ये चीज भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी ले लेंगे, नमक भी ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे, अरे वही इसको थोड़ा किनारे रखो
0: भले आप रखें उस पे सामान लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है डाइनिंग टेबल तो है लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं, बेशक खाइए लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसा सामान उठा करके ला के
1: अलमारी ना बनाइए। चलो एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी, उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है। अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी को भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में, खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए इंजन की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
3: हमने साफ सुथरा हाँ, कर लिया सब,
4: तो खाना भी तो पका लें,
3: भूख लगी
4: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
3: और बताइएगा हाँ, कैसा लगा।
4: तो हमारे एक साथी ने भेजा है चौसेला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खासतौर से त्योहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए, तलने के लिए वो अंदाज से ले लीजिए, गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार। चौसेला बनाने की विधि है कि एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नमक, अजवाइन या जीरा मिला लें, उबलते पानी में ही थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण इन्होंने लिखा, जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हथेलियों से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं, और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें, और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
3: बिल्कुल। और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो, इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिलीजुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियां 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी आधी छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे

0: या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकालकर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पिसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चुपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें। इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें। इसे ढक कर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आँच पर भाप में पकाना है। और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें। इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
1: स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना?
0: बनाने वाली हूँ तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली हूँ।

0: तो दीपा तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
1: गा के नहीं भाई, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
0: अच्छा,
1: तो सुनाएंगे गाना।
0: चीटिंग करी है तुमने।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं की है। और देखो हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन
0: घड़ी नहीं करने देगी, है ना?
1: नहीं करने देगी। वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
0: चलो अब दोनों बहने निकलो। चलो तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और
1: जी
0: दीपा महेश्वरी का नमस्कार बोलो
1: और मंजरी का नमस्कार।
0: चलो ठीक है, ओके।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने सुना पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। आइए अब सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग।
1: डॉक्टर साहिबा, आज हम महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दोचार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
2: जी।
1: और वो समय है मेनोपॉज का। क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या।
2: जी, जैसे ये वर्ड बताता है मेनो पॉज, मेनो यानी पीरियड, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है इसको हम मेनो पॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए, जब हम उसको लेबल करें आज मेनो पॉज की, एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनो पॉज बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनो पॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनो पॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड जिसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे खत्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रीट करती है। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरीमेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है, और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
2: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 45-50 ईयर्स है। उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
2: जी जी।
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको भी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
2: जी।
1: तो नहीं होता
2: जी,
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती है।
2: यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
2: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
1: तो अच्छी बात क्या है, सही

0: पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
1: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है, और जब लेट होता है पीरियड मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है दैट मींस बॉडी में एस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
0: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत जरूरी है।
1: यस,
0: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा, एक गीत सुन ले आपकी पसंद का।
1: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनेक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पांव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम, ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमोटर सिम्टम्स हैं। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: जी, अच्छा
1: जी। तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट। तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले, समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है। आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज को नजरअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफी टाइम हम देखते हैं व्हील चेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन हैं, वो इस चीज को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफी हद तक, काफी एज तक, 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
0: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा।
1: डेफिनेटली
0: ध्यान रखना जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने महावारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले

0: बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे?
1: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम एस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
0: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है कि नहीं।
1: जी जी जी।
0: तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है?
1: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए।
0: जी तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए,
0: क्या बात है। लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं, गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
1: आशा भोसले
0: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वजन बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ शी इज डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मींस आर्टिफिशियली हम ये एस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि एस्ट्रोजन जब ज्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो जब अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन एस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करे,
0: डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती है। जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस और मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोस्फियर जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
0: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं, और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
1: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको

0: प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी,
0: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है। मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुल ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए।
1: जी, जी।
0: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे का देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नजरअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
1: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वहीं खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा।
0: यस, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात। और महिलाओं को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
0: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं, पर अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं।
1: अच्छा,
0: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है, जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती
1: है, महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
0: जी, तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है, तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
1: चाहिए। जी, यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में?
0: साल भर में इज फाइन,
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए।
0: जी,
1: तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें। होम मेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी काफी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं?
1: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे, और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे।
0: यस,
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे,
0: यस, और फिर सो जाते थे थक के, यस,
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था,
0: जी जी,
1: और घर का बना हुआ खाना, ना उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं,
0: जी जी बिल्कुल,
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है,
0: जी,
1: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए, सभी कारण भी
0: जी।

0: चलकर इन चीजों को
1: देखें। यस, तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है
0: जी।
1: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत, बहुत ही जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात, आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है।
1: बहुत, काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे यू नो कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को। इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है। एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहां एक घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
0: बिल्कुल आपने कहा, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी
1: जी।
0: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: There are so many, तू रूठा तो मैं रोऊंगी सनम,
0: ये गाना सुनना चाहती हैं। फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोंसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ है कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली, वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इश्यू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है, IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन दे के ज्यादा अंडा, जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स, हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
1: तो सबको तो नहीं होती है। कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया। इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
0: अच्छा,
1: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक

0: इसलिए दूर कर दी
1: नेचुरली यस विदाउट एनी ट्रीटमेंट. और दूसरे एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ मतलब नेचुरली है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपोजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपोजिट करते हैं बस खाली उतना
0: फैसिलिटी.
1: हाँ तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है.
0: अच्छा तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है ये डॉक्टर
1: पहले तो यस ये पहले सब टेस्ट होती हैं. तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं ये नहीं है. ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है इसलिए नहीं है. काफी हद तक आई वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम
0: ये समस्या होती है. और ये तो
1: कई बार दोनों में होती है कई बार हस्बैंड में होती है लेडी में नहीं होती है.
0: लेकिन
1: ब्लेम होता है खास करके मैरिजेस में तो बहुत ही
0: डिफिकल्ट. गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा मतलब बुरा सुनना पड़ता है जिसका दुख होता है. आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं.
1: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना. जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो बट एक्चुअली हस्बैंड हुज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल लड़की या बॉय.
0: जी बिल्कुल सही कहा. इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है. तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का
1: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म.
0: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं.
2: तेरे

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब आईवीएफ ऐसा नहीं है कि आईवीएफ करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: का भी ध्यान रखना है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एक फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देयर आर सर्टेन डिजीजेस लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जहां पे

0: आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टन टेस्ट करते हैं, तो काफी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक

0: देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का ही की।
1: चलते चलते मेरे ये की

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग देखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत जरूरी है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

छाया गीत में आज ऐसी नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दुनिया के दो अलग अलग कोने, दो अलग अलग शख्स, वक्त के स्केल पर जाने कैसे घूमती है धरती कि दोनों आते हैं एक दूसरे के करीब, इतने करीब जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को, जैसे वो बने हों

दुनिया, जुल्मतों और बेदर्दी वाली ये दुनिया, यहां लगती हैं ठोकरें, यहां टूटता है भरोसा, यहां रोशनी के सागर में मिलता है अंधेरा, और कभी कभी लगता है कि सचमुच इस दुनिया में है कोई कोना जो हमारा अपना हो, जहां हम सुकून से जी सकें।

बारिश सिर्फ आसमान की मुंडेर से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमेशा बादल अपना बटुआ खोलें और लुटाते रहें बूंदों की अशर्फियां हमारी धरती पर। कोई कोई बारिश मन के अंदर होती है और सुलग सुलग जाता है मन।

उदास है दिल, उदास दिल गा रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

0: क्या करूं।
1: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें,
2: न तुम हमें जानो,
0: न तुम हमें जानो।
1: फिल्म बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन।
2: ओ मेरे दिल कहीं और चल,
0: उनकी दुनिया से दिल भर गया।
1: फिल्म दाग, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन।
2: गिर सावन,
0: सुनद सुनद जाए मन।
1: फिल्म मंजिल, योगेश राहुल देव बर्मन।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
3: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
3: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
3: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
3: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में

0: आकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
0: जी,
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
0: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी,
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी,
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी,
1: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं,

0: तो हलने को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?

0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम,
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह,

0: भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी जी।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
8: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
5: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
8: हाँ हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ बताओ।
13: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
12: हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बना

0: बनाना होगा
1: सिंचाई टैंक
0: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
2: अच्छा सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
3: हाँ हाँ ये ठीक रहेगा।
4: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी, जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी, कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी कटक आपण माने आंचलिक संवाद सुनिपरिबे किछि समयर विज्ञापन परे
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाय

0: पार्टी दरकार प्रथमे चैंपियन सहित सेल्फी उठेबा आइडिया एची पार्टी करबा चलो पिज्जा पार्टी ये चल तो कार्ड ओपन दे
1: मो कार्ड रो डिटेल्स मु निजे ही भरीबी आरबीआई कहे जे निजर पिन ओटीपी सीवीवी किंबा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड कहा सहित शेयर करंतु नहीं ऑनलाइन बैंकिंग केवल निजर कंप्यूटर मोबाइल एवं सिक्योर नेटवर्क द्वारा करंतु
0: बाय गर्ल्स कुआडे जाउछु सुनी परलुनी नो शेयरिंग
1: आरबीआई कहे सचेत होवंतु सतर्क रहंतु
2: राज्यर युववर्गଙ୍କୁ सबुज शक्ति और सौर प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में दक्ष करिबा लक्ष्य नहीं सबुज शक्ति उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा करा जीव।

0: とかも。
1: तो कार्यक्रम रे कोल्हो संप्रदायर गीत सुनंतु परिवेषण करिसंती हाडीबंधु पूर्ति एवं तांकर साथी कलाकार माने।

0: कथा ले में से
1: चमटू बाबू हपन नंदू भाई गोहला दुकान मंगलवार बलिठिए हाट बुधवार रंगामटिया हाट आर रविवार हिलो कुलियाना हाट रे पूर्व से समांगते दुड़ुक कना हाट दिन छड़ा करते जतो दिन कुचे बस स्टैंड सुर दुकान खुले ताहन कना आर गोहला दो आको के को बनाए
0: आर गारंटी दो मेना से बंगा
1: पूरा पूरी गारंटी नंदू भाई गोहला दुकान कुचे बस स्टैंड मोबाइल नंबर 9437112459 चला लांग से गो
0: चलो लांग तबे
2: हाँ भाई क्या चलो हो
3: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
2: ओह माने कथा फिटे कह
3: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलई मशीन टुल्लू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबुल मनोब्लॉक आउ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजेल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेठे सबु रकम सुविधा मिलुची
2: केठे मिलुची हो एते सुविधा
3: जानिन बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
4: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनी कुनिया छक बारीपदा
2: ताला जीबा ना की कहू
3: चलो

0: ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।
1: ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
2: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पाई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु। आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
0: मासक मास विद्युत बिल बढ़िवारे लागी छि भारी असुविधा हलाणी।
3: हां जेहले करिबा कोन घरे नाना काम रहू छि गरम भी संभाली होउनी।
4: मामा कोन हैला इते चिंता रे।
5: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत की व्यापक नीति से अमरीका रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
6: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब

0: और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इसे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: को हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में

0: अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
1: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट

0: इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें पुनरीक्षण एसआईआर के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
2: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 पीएचडी स्कॉलर्स को पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
3: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
5: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
3: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

0: के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
2: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and deepen cooperation in energy. Says India's multi-alignment approach enables engagement with global partners. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, technologies. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
4: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी।
3: Secretary West and External Affairs Ministry, C.B. George, addressed media in New Delhi this evening on agreements signed.

पतंगा फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। अगला गीत गुमनाम फिल्म से है, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और शारदा ने। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अनुभव फिल्म से, जिसे गाया है गीता दत्त ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत कनु रॉय का।

गीता दत्त के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए जाए, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: गदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो आँखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों
1: अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देके देखो।

उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई

उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना, जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए, जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दनबाई से हुई, जो खुद एक संगीतकार थी। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखी और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत

जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया।

सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया और इस टिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया।

फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया, लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा।

दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज धार, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप शब्बीर और सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने गाना दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के जे येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया।

0: क्या दिए।
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर। संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: विनोद बाबू
1: सारे
0: ग्रंथारम्भ मंगलमाचार्य
1: हाँ हाँ
0: बना जाओ खराबा श्री राम कृपा कृपा दशवतार देवेश आदि कुर्वन्तु ते मंगलम् जुगे जुगे भगवान दुष्ट मान को दड़न करी संत मान को पालन करिबा उद्देश्य रे अवतार ग्रहण करिथांती पृथ्वी पृष्ठ रे सेही नारायण धारण करिथिबा दश अवतार सेही दश अवतार ठाकुर आज समग्र विश्वर कल्याण साधन करंतु बोल प्रेमानंद देखबार हरि बोल।

0: एकक और हिंदी कथा चित्र
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इंस्ट्रूमेंट भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के

0: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: এতিয়া যে কাৰ্যক্ৰম ৰিলে কৰি শুনাইলো আকাশবাণী দিল্লীৰ আকাশবাণী বাৰিপদা ষ্টুডিঅ' ঘড়ীৰে সময় বৰ্তমান ৰাতি 11:05 শুনন্তু আচন্তকালিৰ কাৰ্যক্ৰম সম্পৰ্কে কেতোটি সূচনা আচন্তকালি প্ৰাতঃ অধিৱেশনৰে সকাল 6:05 শুনিপাৰিবে ভক্তি গীতৰ কাৰ্যক্ৰম বন্দনা সকাল 7:25 শুনিপাৰিবে সান্তালী আখৰা কাৰ্যক্ৰম দিন 8:15 শুনিপাৰিবে কাৰ্যক্ৰম গীতাঞ্জলি আসন্তকালি দিন 12:00 শুনিপারিবে লোকসঙ্গীত কার্যক্রমে চহলা আসন্তকালি সন্ধ্যা অধিবেশনের সন্ধ্যা 6:00 প্রচার করব যুববাণী 6:30 শুনিপারিবে সূচনা ও সংবাদর কার্যক্রম শুনলে আসন্তকালির কার্যক্রম সম্পর্কে কতটি সূচনা আজির অধিবেশনকে এটি রক্ষি রয়েছে পুঁ আপনার অভিবাদন জনাইব আসন্তকালি প্রাত অধিবেশনের সেত যাই বিদায় দিও জয় হিন্দ।